خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर लिसनिंग टू जी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सुर से हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं सिंध की गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपका मेरा साथ रहता है, ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है, सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अलोंग द नेवर। अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा।

के बीमार हैं, उनको कहने के गए जो वो लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़े, कुछ बड़ा, कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर जायज काम में कामयाब होते रहें। आमीन सुमा आमीन। इसके अलावा जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगले, जी आया हूं, सब बिस्मिल्लाह, बाजार शाम, नी हाउ, एंड वेलकम टू जिंदगी गुजार है।

आगे जो प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो क्या मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रही हूँ बाय कुक स्टूडियो सीजन 9 निर्मल रॉय एंड जबर अब्बास। सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

साथ हम चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय आतिफ असलम फ्रॉम एल्बम सुबह आईना. और इसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग मैं अपने शो में प्ले करने जा रही हूँ. एंड द सॉन्ग कॉल्ड लेट्स हैव सम फन. तो उसको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं. सॉन्ग के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और न्यूज ब्रेक भी होगा. ठीक है, दोनों के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान जे सियासी ऐं फौजी क़यादत सां मुलाक़ात हूं आपने हर्मुज़ खोलण ऐं ईरान अमरीका तकरार जे ख़ात्मे ते गौर घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल जी ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातनि खे नतीजो ॾींदड़ क़रार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नक़वी चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो मोहर अमेरिका ईरान तकरार ऐं विच ओवर में जारी छिकताण जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश जे मुकमिल बहाली लाइ घुरबल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान थियल अहम अखबराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं ख़िते में जटादार अमूल जे क़याम लाइ मददगार साबित थींदी।

अमेरिका के इदारनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाव सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त वाशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मुफ़ाहिम ते अमल करणु घुर्जे। अमेरिका खे ईरान सां मुस्बत अगबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।

अमेरिका ईरान खिलाफ़ नए मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राबता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राबता ख़तमु करे छॾींदो। अमेरिकी दफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कार्रवायूं कयूं वेंदियूं। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे, लंग मां तेल जी रस्ते जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मीरपुर खास की हो तो आवाज भी मीरपुर खास की है।
2: टू कमर्शियल ब्रेक। शुएब शेर, शुगर, मैदा, फालिज, ब्लड प्रेशर, जिगर, पेट के तमाम अमराज और शुगर की वजह से पाँव में हो जाने वाले जख्मों वाले मरीजों का हर बुध दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस: अल शफा मेडिकल सेंटर, न्यू टाउन, मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02338744045।
3: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी स्किन खे बणाए रेडिएंट स्पार्कलिंग ऐं डिए शानदार मिरेकल ग्लो, कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब। आर्ट्स ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे शहर खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप ट्रेगे ताई लगी रही आहे, जेमे डॉक्टर असद अजीज, MBBS MS आर्थो, आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी ऐं जोड़, गोडन जो सूर, चेल जो सूर, कंध जो सूर, अर्कुन निसा जो सूर, पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजण, टुटल बाह ऐं टंग, ऐं हड्डियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो। हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर, डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल, वेझो सोढ़ा फ्लोर मिल, 7G रोड, खिपरो। नोट: डॉक्टर साहब हर अंगारे ते OPD कंदा। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 ऐं 0344-349-8896।
5: अखियुनि जे सभ खां वॾे इदारे जा मशहूर ऐं तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी ऐं सर्जन डॉक्टर इसाज ऐं अखियुनि जी ॿिनि बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहिनि। टाइम रोज़ाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं, शाम 6 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं। आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं ऑपरेशन कया वेंदा। एड्रेस: सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेज़र अखियुनि जी अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 03032617077।
6: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कंदा आहिनि। अलहमदुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अव्हां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062447700।
7: कारोबारी हज़रात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जी मीरपुर खास। शादी ब्याह की मुबारकबाद, मिलाद, जलसा, स्कूल, कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, NGOs, food points, electronics shops, showroom, auto shops, housing schemes, cricket tournaments, sakafati mela, hotels, restaurants, petrol pumps, CNG stations, shadi hall, mukhtalif

0: परेशान हूँ, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 0300-111-3488। तो आपने कहना है कि गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए, ठीक है? तो ये बोलेंगे और ये जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को। अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी चलते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं। तो हुसैन तुनी हमें ज्वाइन किया है। नूर हुसैन तुनी कहते हैं कि सिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर रुखसार, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी हम साथ साथ मैसेजेस की तरफ भी चलेंगे। तो हमें मैसेज कर दिया है मिठड़ी रुखसार, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो? इंशाल्लाह ठीक होंगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बड़ा शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे और हम इंटरटेन करेंगे कॉल्स को, ठीक है? तो कॉलर में इस लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: कबीर को से पूछिया का।
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अच्छा, मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो के टंग ट्विस्टर बोले और टंग ट्विस्टर कहें, और वही लोग कॉल करें तो उन लोगों की कॉल्स में रिसीव करूंगी हंसी खुशी या खुशी खुशी।

के साथ सर जी मैसेजेस आप लोगों के मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं. मटरी रुखसार, अच्छा ये मैसेज हमें किसने किया है? आई गेस ये जो मैसेज है हमें सफदर, हाँ सफदर बलोच मोरो से हमें मैसेज कर रहे हैं जी. थैंक यू सो मच. कहते हैं कि पत्थर दिल मोम बन जा. सौदा वफा का एक नूर बन जा. गमों से दूर ले जाऊंगा तुझे मैं तेरा आगे मिसिंग पार्ट. अच्छा आज के टंग टेस्टर गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए. अच्छा ये कुछ टेक्निकल इशू हमारे साथ कॉल्स का आ रहा है. मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव करूँ.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए. रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
3: खुशखबरी अवाजे शहर खिपर आई 25 अगस्त 2000 MBBS MS आर्थो आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी आई जोड़ गोडन जो सूर चेल जो सूर कंध जो सूर अरकुन निसा जो सूर पैदाइशी पेरन जो टेडो हुजन टुटल बाह आई टंग आई हड्डियन जी कमजोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल वेझो सोढ़ा फ्लोर मिल 7G रोड खिपरो. नोट डॉक्टर साहब हर अंगारे ते ओपीडी कंदा वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 आई 0344-349-8896.
4: अजरा बहन जरा बात तो सुनो. हटो पीछे भागो. अहमद हटो वहां से.
5: के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत हुकूमत सिंध.
2: खूबसूरती खपे त आर्च अपनायो. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा आई एवोकाडो अवां जी सनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग आई डी शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक आई निखार जो बेहतरीन इंतखाब. आर्च ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड.
6: शायरी उनका असल नाम अहमद शाह था जबकि अहमद फराज उनका तखल्लुस था. उनके वालिद सैयद मोहम्मद शाह बर्क का शुमार फारसी के मुमताज शोरा कराम में होता था. अहमद फराज ने उर्दू फारसी और अंग्रेजी अदब में मास्टर्स डिग्री हासिल की और यूं उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया. रेडियो पाकिस्तान के बाद अहमद फराज पिशावर यूनिवर्सिटी से बतौर लेक्चरर मुंसलिक हो गए. वो पाकिस्तान नेशनल सेंटर पिशावर के प्रेसिडेंट डायरेक्टर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के अवलीन डायरेक्टर जनरल और पाकिस्तान नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदों पर भी फाइज रहे. अहमद फराज का शुमार अहदे हाजिर के मकबूल तरीन शोरा में होता है. उनकी अमूमी शनाख्त उनकी रुमानवी शायरी है लेकिन वो मुआशरे की नाइंसाफियों के खिलाफ हर दौर में सदाए एहतजाज बुलंद करते रहे कि जिसकी पादाश में उन्हें मुख्तलिफ पाबंदियाँ झेलनी और जिलावतनी भी इख्तियार करनी पड़ी. अहमद फराज के बेशुमार शेरी मजमूए शाया हुए कि जिनमें तन्हा तन्हा दर्द-ए-आशोब शब खून मेरे ख्वाब रेजा रेजा जाना जाना और गजल बहाना करूं सरे फहरिस्त हैं. अहमद फराज की शायरी को बहुत से नामवर गुलकारों ने भी गाया.

0: अहमद फराज को बेशुमार एजाजात से नवाजा गया कि जिनमें आदम जी अदबी इनाम, कमाल फन अवार्ड, सितारा इम्तियाज और हलाल इम्तियाज शामिल हैं। उन्हें जामिया कराची की जानिब से पीएचडी की एजाजी डिग्री भी अता की गई। अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को इस्लामाबाद में वफात पा गए। आज 25 अगस्त अहमद फराज के यौम वफात पर जीए मीरपुर खास FM 88 उन्हें याद करते हुए खिराज अकीदत पेश करता है।
1: सिंधड़ी आमों की सरजमीन,
2: सिंध का शहर खास,
1: मीरपुर खास।
3: जो पैगाम बेन ताई पहुंचे, जी पुडक जी मशहूरी थिए, तपोए मीरपुर खास FM 88 केतरनी नंढन वडन शहरन में बुधो विंदो आहे। पब्लिसिटी जो बेहतरीन जरियो जीए मीरपुर खास FM 88। वधिक राब्ते लाए मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 0333-3722-071।
1: मीरपुर खास की आवाज़।

0: Once again, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपका और मेरे साथ पूरी पूरे एक बजे तक का. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488, जिसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. सो कॉल्स मुझे आना शुरू भी हो चुकी हैं. सो नेक्स्ट कॉलर, हेलो. वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी हम बलोच भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र.
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे?
1: नहीं, आप इसको रिपीट कराएंगे?
0: रिपीट करूं मैं?
1: जी आप, मैंने सुना मैंने.
0: अच्छा चले, मैं रिपीट कर देती हूँ. गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए.
1: गुलाबी क्या?
0: गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए.
1: गुलाबी ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए.
0: चले, मजाक से नहीं हो पाएगा. और कुछ कहेंगे?
1: नहीं, बस मैं कहना चाहता हूँ को कॉल कर देना, वो ज्यादा बेस्ट है. क्योंकि कॉल लगती है तो अटेंड नहीं होती है, और अगर अटेंड होती है तो फिर वो आपको अगर आप कहेंगे शिकायत दे रहे हैं कि मुझे डबलिंग
0: अटेंड होती है तो क्या होता है?
1: डबलिंग अभी भी डबलिंग हो रही है, मैं अपनी वॉइस खुद सुनता हूँ.
0: चले जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. गाला हाफिज जी, थैंक यू सो मच. और ये जो कॉल लगती है या नहीं लगती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती. आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं कोई यहाँ पे फेवरेटिज्म बैठ के नहीं चला रही. अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानो और यकीन करो, मैं कोई स्पेशल लोगों की कॉल नहीं उठा रही. कि मैं तो ये ट्राई करती हूँ नए लोगों की कॉल लगे. देखें अब तो फिर मतलब कि जो लोग डेली कॉल करेंगे उनकी कॉल भी मैंने जो है ना लिमिटेड कर दी है. मतलब वो 3 दिन के बाद कॉल करेंगे. तो ये कुछ ऐसा रूल है, कुछ ऐसा सीन है. तो अब ये कॉल नहीं लग रही, और लग रही है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो अब इसका क्या किया जाए मुझे बताएं ना. मतलब कॉल नहीं लग रही तो मैं कैसे आपकी आके कॉल लगाऊं? कोई यहाँ से जादू कर दूं? कोई कोई रेडियो के टावर में कोई ऐसी स्पेशल सेटिंग कर दूं आपकी कॉल लग जाए? क्या किया जाए? चलिए खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं. कुछ ज्यादा लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम स्मार्ट किशोर, क्या हाल चाल?
2: शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं.
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बताइए, गा के टंग टुस्टर बोलने आए या गाना सुनाने आए?
2: शिकायत करने आए.
0: शिकायत? आपकी भी शिकायत है?
2: आपकी भी, मतलब कोई किसी भी?
0: सॉरी,
2: मैंने कहा आप और किसी की इतनी शिकायत?
0: हाँ, अभी देखें, अभी जो लास्ट कॉल गई है ना, उन्होंने भी इतनी मतलब वो जब भी आते हैं वो शिकायत ही करते हैं, और अभी भी वो शिकायत ही करके गए. और बहुत सारे कॉलेज की शिकायत ये होती है कि हमारी कॉल तो लगती नहीं है और आप उठाती भी नहीं है.
2: नहीं, शिकायत वाले करनी चाहिए.
0: हाँ, शिकायत करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी शिकायत के जिसकी लॉजिक भी आपको पता हो, और फिर वो आप बार बार शिकायत करें.
3: अच्छन वारन खां परेशान आयो, पेश आहे आर्स क्रीम हेयर कलर. आहे आर्स क्रीम हेयर कलर पंहिंजे छा अव्हां अच्छन वारन खां परेशान आयो, पेश आहे आर्स क्रीम हेयर कलर. पंहिंजे पसंदी रंग सा पंहिंजो अंदाज़ बणायो, वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश. पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे, या के खास मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज़ ज़ाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां. पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओं रंग, नओं अंदाज़ ऐं नई ताज़गी. अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो, ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओं रंग. आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज़ में एतमाद.

0: Moro, Noșeru,
1: Mirpur Has,
0: Larkana. गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की
2: और इसी के साथ हम चलते हैं जी आगे एंड कॉल लेते हैं आप लोगों की और एक और कॉल चेक करेंगे हम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहां से? एस आर एच. कैसे? ठीक ठाक. ओके, मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुना है? बोलेंगे
3: नहीं, अभी अभी सफर से घर पे पहुंचे तो सुन नहीं पाए, लेकिन टाइम था बस आपके पास कॉल की.
2: चले फिर, क्या कहना चाहेंगे कॉल करने के बाद? आज की कोई अच्छी बात, कोई खास बात?
3: जी बिल्कुल कहेंगे.
2: तो बोले, बताए.
3: इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है. अगर तूने इसके सुपुर्द कर दिया जो मेरी चाहत है तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है. अगर तूने इसके सुपुर्द ना किया जो मेरी चाहत है तो वो भी तुझे ना दूंगा जो तेरी चाहत है. फिर होगा वही जो मेरी चाहत है.
2: ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और कुछ कहेंगे?
3: बस इतना ही कहना.
2: थैंक यू सो मच एस आर एच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अच्छा, साथ साथ मैसेजेस हैं आप लोगों के मेरे पास. और महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं जी, और कहते हैं कि सखर की खूंज. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? हाय, आपको प्रोग्राम की क्या बात है. अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन. कूंज फायजा का नया सॉन्ग सुनाओ. थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू. कूंज, कूंज, कूंज का मतलब क्या है ये आप मुझे बताइएगा प्लीज. एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय रिजवान अनवर. सुनेंगे, आगे चलेंगे.

0: ओके जी, और मैं कोशिश करूंगी, मैं लास्ट में एक और कॉलर ले लूं, लास्ट में लकी कॉलर. हेलो हेलो, कोई है? ओके जी, कोई नहीं है. मेरे ख्याल से हैंड फ्री सेट हो रही थी या फोन का स्पीकर खोला जा रहा था. नेक्स्ट कॉलर, एक और ट्राई. हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदार, क्या हाल चाल? मैं बहुत अच्छी हूँ. आज की अच्छी बात बता दो जल्दी से. नहीं, टाइम लिमिटेड है और हम जा रहे हैं बाय बाय करके.
1: ये आती आती बात, जब भी वक्त मिले उसे खुशी से जिया लिया करो, क्योंकि नोट करते हैं याद ही आती है वक्त में.
0: ओके, वेरी नाइस, थैंक यू. कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच, सो स्वीट सरदर्द. और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत और हम प्ले करेंगे लास्ट में बिलाल सईद की आवाज को. और फाइनली फाइनली हम जाएंगे ख्वाब देखने के लिए. सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. Think high, so this is me, RJ Rukhsar, signs out. Take care, goodbye. Amani khuda, Allah.

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान जे सियासी ए फौजी क्यादत से मुलाकात हूँ आपने हरमुस खोलण ईरान अमेरिका तकरार के खात्मे ते गौर करू वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जी ईरानी क्यादत से मुलाकात के नतीजो दींदड़ करार दई छो। समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में मोहसिन नकवी है गाल महूर अमेरिका ईरान तकरार ए विच ओवर में जारी चिकतान के खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुकम्मिल बहाली लाय घुर्बल कदम खण से गौर किया। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह कर मुलाकात दौरान फैल अहम अखबराई मुस्तबिल में मुस्बत कदम लाय रस्तों खोलिंदी ए खिते में जटादार अमुन के क्याम लाय मददगार साबित थन्दी।

0: थियनि ऐं तबाह सां मसइला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुसबत अकबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।
1: अमेरिका ईरान खिलाफ़ नई मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राबता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राबता ख़तम करे छॾींदो। अमेरिकी दफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियारबंदि कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। लंग मां तेल जी रसदीद जारी आहे।
0: अमरीका पासदारनि इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम रखण जो ऐलान। फ़हिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अब्दुल अई अहमद रज़ा ऐं ॿियनि जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आकाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर खाकान फेकदान सां फोन ते राबितो। ॿिनि तरफ़ लाॻापन समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मौजूदु ॿिन्ही अॻवाणनि रीजनल फोर जे एंड इजलास बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। ॿिन्ही अॻवाणनि मौजूदा सूरतयाल ते राबतनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
0: सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानीअ जे इलाज बाबति दाख़िल तोहीन अदालत जी तरफ़ां एतिराज़ लॻाए वापसि करे छॾी। तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते इल्ज़ाम वाज़े करण जी हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौर तस्दीक कंदे चयो आहे त एतिराज़ ख़तम करे अॼु ई दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पाण सां मुलाक़ात ज़रूरी आहे।

छा अदालत जी आईटी जोड़ने लाइ सदीरी हुकुम जारी करे सघे थी, छा अदालत जांच ऐं रिपोर्ट जमा करण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सघे थी। सिंध हाई कोर्ट मीरज़ा केस बाबति लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत हुकुम में चयो आहे त सिंध ट्रिब्यूनल इंक्वायरी आर्डिनंस 1979 तहत गज़ेट नोटिफिकेशन खां सवाइ मुदाख़लत जो केस ठहे थो। सिंध हाई कोर्ट एजी सिंध ऐं डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत धुरियुनि खे मुआवनत लाइ नोटिस जारी करे छॾिया।

0: हक भाऊ पाड़े वासी अख्तर अली चांडे के गोलियों कतल कर छो। लाश अस्पताल में जरूरी कार्रवाई बदमाशन हवाले कयो। पुलिस वाकई की जांच कर रहा है।
1: खैरपुर भरसा फुर मजामत कतल थियल इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो के वारसन जो जवाबदार की गिरफ्तारी लाए धरणो। मकतूल इंजीनियर के वारिस औरतन मर्दन शाह हुसैन बाईपास से धरणो हो। मुजाहरीन फैसल गुलजार भुट्टो के कतल कदड़ जवाबदार गिरफ्तार किया वे।

0: अब आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: जी एफ एम 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: तहजीब व सकाफत से सजी।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है तो वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जिन लोगों को नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम का सवाल क्या रखा गया है। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि एक इंसान का सबसे पावरफुल वेपन क्या होता है, यानी कि एक सबक हाँ पावरफुल हथियार केड़ो आए जेको हु यूज करे पांजी जिंदगी में तो हु शायद कामयाब थी सके। तो उन्हें जो दिमाग आहे, उन्हें जो जबान आहे, या वरी उन्हें जो सबर आहे। सो आप इस सवाल का जवाब मुझे बताने वाले हैं और मुझे ज्वाइन करने वाले हैं 881 पर। आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लिस्ट में हैं जो कि हम जाहिर सी बात है आप लोगों को सुनाएंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करते ना उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि भाई जान प्रोग्राम में जब आप मुझे ज्वाइन करें तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें, क्योंकि जब लोग आप टॉपिक को फॉलो करते हैं तब यकीन होता है कि भाई जान टॉपिक फॉलो करने वाले लोग कितने ज्यादा हैं। वैसे तो बहुत से लोग मैसेज कर देते, बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया और गाना लिख दिया, बस बातें खत्म हो गई। लेकिन जब आप मैसेज कर ही रहे हैं तो टॉपिक को भी फॉलो कर लिया करें, ये अच्छी बात होती है। ओके जी, तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जाने आएंगे।

जनाब, तो जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए गाना भी मौजूद। तो मैं सोच रही थी कि पहले हम ऐसा करते हैं कि गाना लगा लेते हैं, पहले हम गाना लगा लेते हैं और गाना सुनते सुनते ही आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे। ठीक हो गया? तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना लिस्ट में सेट कर दिया है। ये गाना आप दोनों के साथ हम सुनेंगे, आप सब लोगों के साथ सुनेंगे, बल्कि दोनों के साथ ही गया। तो गाना एंजॉय कीजिए और मुझे बताएं आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार क्या होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र।

ही जैसा होता है, कुछ बात ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, और प्यार भी उन्हीं बातों में एक ऐसा, यानी कि जब प्यार हो जाता है तो इंसानों को कुछ भी समझ नहीं आता, तो बिल्कुल वैसे ही प्यार वो बला है जो समझ ही नहीं आए। ओके जी, तो गाना एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें, तो चाचा खालिद हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की आयो, खुश आयो? हाँ जी बिल्कुल खुश आया, ताम बुधाए की आयो, ठीक ठाक आयो? इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त। हाँ जी आपको वेलकम कहा जाता है। और दादू खां इमदाद जतोई है, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्लाह जतोई, आप सब मिलकर हमारा प्रोग्राम एंजॉय करें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली हमारे साथ हैं मोरो सिटी से, कहते हैं लाड़काना की कुंज, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहे सिस्टर सिद्रा, कुंजा शाहिद बबर का गाना तो सुनाना, हाजिर साईं हाजिर, तांजो फरमाइशूं हलाईंदासीं, न हलाईंदासीं त काॾे वेंदासीं, बिल्कुल तांखे प्यारो सोनो शाहिद बबर जो गानो ॿुधो। उनखां अलावा हमारे साथ ही चाचा खाले दोबारा कहते हैं बेटा सिडो, अॼु बि सॉन्ग जी रिक्वेस्ट आहे, तव्हां गानो लिखियो आहे, ठीकु आहे, इहो गानो हलाए वठूं था तव्हांजे लाइ, ऐं मोहबतूं आहिनि, तव्हां सभु असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, टॉपिक खे फॉलो कयो था कोन? कयो बाबा कयो, टॉपिक खे फॉलो कंदा कयो। उनखां अलावा जेके माण्हू असांखे हाणे हाणे जॉइन कंदा वञनि पिया, उन्हनि खे चऊं था भली करे आया, तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। ऐं सवाल तव्हां खां इहो पुछियो आहे त हिकिड़ी माण्हूअ जो सभ खां पावरफुल हथियार कहिड़ो हूंदो आहे हिकु इंसान जो, उनजो दिमाग़ हूंदो आहे, उनजी ज़बान हूंदी आहे, या वरी उनजो सबर हूंदो आहे। अक्सर ईअं हूंदो आहे न, कुझु माण्हू जी ज़बान एतिरी त ख़तरनाक हूंदी आहे माण्हू उन खां थोरो पासो कंदा आहिनि, ऐं पासो इन वजह सां न आहिनि कंदा त हू माण्हू उन खां डिॼंदा आहिनि, बल्कि इन वजह सां कंदा आहिनि छो त कई मरतबा तव्हां ॾिठो हूंदो त कंहिं माण्हू जी ज़बान सां बि खोड़ सारे माण्हुनि जो नुक़सान थींदो आहे, ऐं कुझु माण्हू जो वरी दिमाग़ बि अहिड़ो हूंदो आहे, कुझु माण्हुनि जो दिमाग़ एॾो शातिर हूंदो आहे जो उनजे दिमाग़ ऐं चालाकियुनि जी वजह सां खोड़ सारे माण्हू जूं ज़िंदगियूं ख़राब थी वेंदियूं आहिनि। ऐं हा, सबर वरी उहो हथियार आहे जेको अगरि माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी में एड करे थो त पोइ बाबा ॿेड़ो ई पार आहे। त तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा थो लॻे, हिकु इंसान जो सभ खां पावरफुल हथियार कहिड़ो थी सघे थो?

वो तो बन ही जाएगी. ये खुशफहमियां हाय.

जी कितना प्यारा गाना है, सुन रहे हैं ना? बिल्कुल जी, सुनिए, आप लोगों के लिए लगाया मैंने लिस्ट में। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर इंसान का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार उसका सब्र होता है। ओके ओके। सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूने जो हमारे साथ ही, कहते हैं सलाम सिद्रा मुस्कान, वालेकुम असलाम, कहते हैं शो नाइस है, जवाब सब्र, सब्र जिनजो सेर तिर तीर न घुसे तिनजो। सही सही, ॾाढो वीआईपी तव्हांजो मैसेज। उन खां अलावा हे जी हमारे साथ चाचा खालिद, कहते हैं सब्र और शुक्र ऐसा हथियार है जो इंसान को कभी भी झुकने नहीं देता सिवाय एक अल्लाह पाक के। गुड टॉपिक आंसर। ओके नाइस। अच्छा ये हमारे साथ हैं दिल रुबा, कहती हैं फ्रॉम नोशिरो फिरोज, हाय आपी जान कैसी हैं, नाइस शो मास्टर मंजूर तो प्ले करना, हाजिर हाजिर, सबने जो फरमाइशों हलायूं था कोई भी न रह जंदो। उनका अलावा हमारे साथ हैं जी ये, हेलो आपी कैसी हैं आप, टॉपिक का जवाब है सबर करो अल्लाह कामयाब कर देता है। सितारा हमारे साथ हैं, सितारा क्या कहती हैं, आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करती हैं, फरमाइश आपका अहमद मुगल का गाना लगाएंगे जी आज, आप टेंशन क्यों लेते हैं। सितारा को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। दादू का फारूक हैदर जतोई हमारे साथ, कहते हैं सबर पर गानो बुधायो मास्टर मंजूर जो। ओके तव्हां गानो लिखियो आहे, ठीकु आहे, मां कोशिशि कयां थी तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाईंदासीं, न त मास्टर मंजूर जो कोई भी भलो भलो गानो हलाए छॾींदासीं, ठीकु आहे। सो थैंक यू तव्हां सां गॾु आहियो।

इंतजार कर ही लेना, कोई मसला नहीं है. उनके अलावा ये हमारे साथ है फजीला. फजीला कहती टॉपिक सबर ही सबर है डियर टॉपिक आंसर. ओके ओके वेल डन, आपको वेलकम कहा जाता है फजीला. ओके जी, जितने प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद. प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. रसूलाबाद से आबिद हुसैन शम्बानी भाई, वालेकुम अस्सलाम. अदी, आदमी के पास दिमाग होगा तो जबान का इस्तेमाल सही और सबर का मुजाहरा करेगा. और हाथ जो के बाद आपका मैसेज जो है ना वो मिसिंग पार्ट हो चुका है. पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन आपका जवाब बड़ा ही अच्छा लगा.

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि जाहिर सी बात है हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। ये होने वाला है जी राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना हम साथ साथ सुनेंगे और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं बिल्कुल जी आपके मैसेजेस और उनका अलावा टॉपिक ही तमाम फॉलो कर दो वन पाया टॉपिक मुझे पुछो है तो एक इंसान जो सब खां पावरफुल हथियार कड़ो थी सके तो उनजो दिमाग उनजी जबान या वरी उनजो सबर पर यह गाल भी बिल्कुल सही है दिमाग हों तो उनके खबर पड़ी सब चीजों की सही है छा गलत है पर अगर दिमाग न हों वरी उनके या भी खबर न होंगी तो जबान के किथे कड़ी तरीके से यूज करो है तो यो भी सही ना है अगर ये भी ना है तो बस इंसान हर चीज से वेठो सबर करे हाँ सबर करो हो जिते तो उते करण घुर्जे जिते सबर न करो हो जाए तो हरगिज न करना करो क्योंकि कई मरतब आपने इस चीज को भी नोटिस करा होगा कि बहुत से लोग जो कि इस तरह के होते हैं भाई जो जिन्हें कुछ भी किया जाए हाँ जी कुछ भी किया जाए लेकिन वो हर वक्त सिर्फ सबर करते रहते हैं तो फिर उन लोगों को दुनिया जो है ना वो क्या बना देती है और वो क्या बन जाते हैं ये चीज भी आपने शायद नोट करी होगी लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या जवाब होगा और मोहम्मद जमान हमारे साथ है वेलकम बुआ जी टॉपिक अकल ओके सही है जी वेलकम कहते हैं आपको भी खुश आमदीद और ऐसे सुनते रहिए प्रोग्राम शामले प्रोग्राम होते जाइए यहाँ पर ये प्यारे सा गाना एंजॉय कीजिए गाने के बाद हम जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि हम आपके साथ मौजूद रह रहे हैं तो यूं जाकर यूं वापस आ जाएंगे स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान के सियासी और फौजी क्यादत से मुलाकात हुआ, आपने हरमुज खोलन है ईरान आवे। जारी कैल बयान में मोहसिन नकवी चवाहे तगालिन जो मोहर अमेरिका ईरान तकरार है विच ओवर में जारी चिकतान के खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश के मुकम्मल बहाली लाए घुर्बल कदम खड़ने ते गौर किया वो। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह कर मुलाकात दौरान थे मकबराई मुस्तबिल में मुस्बत कदम लाए रस्तों खोलींदी है खिते में जटादार अमून के क्याम लाए मददगार साबित थी।
2: अमेरिका के गालन के बहाली लाए पांजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियों ने तबाह से मसला हल थियण बदरा मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान है वाशिंगटन के इस्लामाबाद में तय थियल मफाहमत अमल करण घुर्जे। अमेरिका के ईरान से मुसबत अग्राही लाए रवैयो तब्दील करणो पवंदो।

0: अमेरिका ईरान खिलाफ़ नए मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राबता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिका नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राबता ख़तमु करे छॾींदो। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंदि न आहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कारवायूं कयूं वेंदियूं। आबन हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। लंग मां तेल जी रसबित जारी आहे।
1: अमेरिका पासदारनि इंकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान। फ़हिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्द वहीद, अहमद रज़ा जा ऐं ॿिया नाला शामिल आहिनि। अमेरिका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद अकानी ऐं मजीद खादमिया नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं अॾनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फुगदान सां फोन ते राबितो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। परॾेही खाते मौजूद ॿिन्ही अॻवान रीजनल फोरम जे ईंदड़ इजलास बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। ॿिन्ही अॻवाननि मौजूदा सूरतयाल ते राबतनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
1: वज़ीर आज़म समेत कैंप ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आणण अपोज़िशन जो हक़ आहे। रोके नथो सघिजे, वक़्तु अचण ते ई ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक़ चयो आहे त कोरम पूरो करणु स्पीकर न पर हुकूमत ऐं अपोज़िशन ज़िमेवारी आहे। अॼु इजलास में बहितरी आई आहे, सुभाणे वधीक ईंदी। कानून साज़ीअ बाबति अपोज़िशन जो इताद थियणु सुठी ॻाल्हि आहे। कमेटीअ तां पीटीआई जूं ॾिनल इस्तीफ़ाऊं क़बूल न आहिनि कयूं। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं। हाणे अपोज़िशन अॻिते वधंदी त असां बि वधंदासीं।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

वाला शुक्रिया। ओके जी, तो आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, और जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को कहते हैं वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों, समादों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रही हूँ जो कि सागर की आवाज में है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस की जाने बाज आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि हमारे मैसेजेस कब शामिल प्रोग्राम किए जाएंगे। तो बिल्कुल जी, अभी किए जाएंगे। तो जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी अनीस अली चन्ना, चनेसर हुसैन बलोच, गुलन माँ खुशबू पर गुलाब न मिलियो, पिरन की चाहियो हकीकत, खिताब सो खिताब न मिलियो, ऐं चौथा टॉपिक जवाब, हकीकत में हथियार सब खां तेज अखियूं हूंदियूं आहिनि। अखियूं, सही सही। अवेश चन्ना हमें सुन रहे हैं जी, आपने लास्ट में ये लिख दिया है, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा हमारे साथ ही हाय बाजी, कैसी हैं आप, आई एम राबिया फ्रॉम हाजन शाह। ओके राबिया हमें सुन रही हैं हाजन शाह से, राबिया आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है स्वीटी। और जी गुलाम फातिमा हमें सुन रही हैं, गुलाम फातिमा हमें सखर से सुन रही हैं, तो प्यारी छोटी गुलाम फातिमा को दिल से वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। रोज आप हमारा शो बड़े शौक से सुनती हैं गुलाम फातिमा, थैंक यू। मीरपुर खास से अब्दुल्ला बहर हमारे साथ, सलाम बाजी, टॉपिक दिमाग और सॉन्ग सुनाओ शाहिद बब्बर का, थैंक यू। शाहिद बब्बर तो गाना गा कर चले भी गए, आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ हैप्पी हैप्पी फाइजा, वालेकुम अस्सलाम, सिटो जाने क्या हाल है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मिस मी आर नॉट, यस आपको बहुत मिस किया कहती हैं, बट आई मिस यू मोर माई क्यूट आरजे, थैंक यू वेरी मच हैप्पी फाइजा। और कहती है घर से कुछ सामान लेने आई थी तो सोचा आपसे मिलती हुई जाऊं, वापस जाऊंगी, हमारे यहाँ तीन शादियां हैं, माता फुल मजे में, आप फुल मजा कहो, बाबा फुल मजा कहो। इरम कहती हैं दिलबर आप ही जवाब।

अच्छा क्या देती हैं जवाब, सब्र। और प्लीज प्ले रऊफ मक्सी का गाना, मां कोशिश क्या थी गानों टाइम बची तो हलाएं तो नता सा 5 बजे वाले प्रोग्राम में बुदना सिंह ठीक है। अच्छा ये हमारे साथ हैं गोठ पाबू वीरो थर पार्कर से दिलीप कुमार मेघवार, नवल राय मेघवार, दानिश कुमार। ओके इतरो तांजो मैसेज आ लगी तो होगी ते मिसिंग पार्ट थी वयो आहे वरी बियो तो हम मैसेज करा जवाब दिनो आ तमा जवाब वारो मैसेज भी ताने थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो आहे। सो थैंक यू सो मच तमा से गड मौजूद है तांजो मोहब्बत वाइन बाबा प्रोग्राम में तमा जॉइन कंदा हो। चाचा खालिद कहते हैं कि खुश रहने के लिए अपनी जिंदगी से जहरीले लोगों को निकाल दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उनका अलावा बियर मैसेज किया चाचा कहते हैं मनाना भी आपको आता है बेटा सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या सीखूंगी मैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं बाजी, मुझे एक सॉन्ग तो सुनाएं तेरे बिन ड्रामे का प्लीज। राबिया हमारे साथ है। ओके ओके राबिया आपकी पसंद का गाना बिल्कुल लिस्ट में है, आप लाजमी इंजॉय करेंगे।

उन्हनि सोनन माण्हुनि खे ॾेढ के जेके मास्टर मंसूर जे गाने जी फरमाइश कंदा आहिनि। अच्छा, हमारे साथ दिया परी मौजूद है। दिया परी, क्या बात है भाई, आप हमारे साथ पैनल पर मौजूद। कहते कैसी है स्वीटी, सफा भली तां ॿुधायो प्यारी कीअं आहियो। कहते प्लीज प्लीज सॉन्ग राहत दिल के तां राहत त अचे, गानो गाए भी वियो। इहो गानो जेको आहे असां 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधूं था, ठीकु आहे। डेडिकेट अली मुर्तज़ा, ओके। हमारी प्यारी दिया परी हमारे साथ मौजूद, उन खां अलावा मौजूद हैं जी हमारे साथ मोहम्मद जमान भाई। कहते हैं कि जालिम ने कहा आप हमें सॉन्ग नहीं सुनने देती, हम तो आपकी महफिल में आते हैं आपकी मीठी आवाज सुन सके, आपके अंदाज को समझ सके, ऐसी अच्छी बातें शेयर कर सके। बहुत शुक्रिया जी। और ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम अदर प्यारी मुस्कान। मायरा हमारे साथ है, मायरा को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। थैंक यू, आप हमारे साथ हैं।

खूबसूरत गाना है और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है जी। अच्छा, टॉपिक को भी फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्यारे लोग हैं जिनको टॉपिक का पता ही नहीं होगा। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं जरा कि आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र।

वारे साथ हैं झुलरी खां खालिक लाशारी के दे शोर नाइस आहे न जाने कौन दुआओं में याद करता है मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है वाह साई वाह वाह साई वाह। और हमारे साथ ही हमारी प्यारी हैप्पी फायजा कहती हैं कि सिडो जानी आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी रेडियो मत छोड़कर जाना, आपके बगैर जिंदगी अधूरी है। माई क्यूट आरजे लव यू सो मच, लव यू हजार मच। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और उनका अलावा असान से प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक जो वो लिस्ट में लगाए छो आए ही वारो गाना बुदना सी राबिया फरमाइश कई हुई बाकी जिनकी फरमाइश रहिजी वनी थी तो उन्हें माजरत करी वी बाकी तो असा पंजी बजे वाले प्रोग्राम में तेजी रेल गाना है वो हल्ए वी ठीक है का टेंशन ही ना बाबा दिल जाए कयो दिल वनी कयो।

ओके जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर चाहत मोहब्बत नहीं बनती और हर मोहब्बत नसीब नहीं होती। कुछ लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि इंसान उन्हें अपनी तकदीर समझने लगता है, मगर वक्त आकर बता देता है कि ख्वाहिश और मुकद्दर दो अलग चीजें हैं। जिंदगी का एक तल्ख सच ये भी होता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में तो आते हैं और हम उन्हें लोगों को पूरी सच्चाई से चाहते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनका इंतजार करते हैं, मगर वो हमारे हिस्से में नहीं लिखे जाते। मोहब्बत भी हमेशा रिस्क की तरह होती है, उसे मांगा जा सकता है, चाहा भी जा सकता है, मगर छीना नहीं जा सकता। फिर एक वक्त आता है जब इंसान समझ जाता है कि हर पसंदीदा चीज अपनी नहीं होती और हर अपना समझे जाने वाला शख्स भी हमेशा अपना नहीं रहता।

अच्छा चाचा खालिद के हिते ही मुंह केड़ो डो कयो तमाचो गानो थोड़ो ये हो त उन जी साउंड क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं न करे मु कोन हलायो बाकी कोई बियो गानो ता जी पसंद जो बुद्धि बैठना सी और दिया कहती है सबर टॉपिक अच्छा टॉपिक का जवाब सबर देती है और कहती है नहीं नहीं इशू कोई नहीं है बस ऑफ कर दिए है आप ऐसे ही पैनल पर मैसेज किया करें दिया ठीक है जब जब आपको टाइम मिले और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी बहुत ही अच्छा लगा और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है वरी तहां से इंशाल्लाह मुलाकात है पई मुझी 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो बुधन में सारी ना मांजो ओ हीरो सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हो जे तो माजरत कयो था जिना फीडबैक रही जी वयान से गाना रही जी वयान सबनी का माजरत कयो था सो मोकलानी ना है बाबू सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड

0: आप सुनेंगे जीए एफ एम
1: गौर घरों वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जे ईरानी क्यादत से मुलाकात के नतीजो डींदड़ करार दई छो। समाजी वेबसाइट ते जारी कल बयान में मोहसिन नकवी है गाल महूर अमेरिका ईरान तकरार विचो ओभर में जारी चिकटान के खात्मे हो। इस्लामाबाद मुफामती याददाश्त के मुकम्मिल बहाली लाए घुर्बल कदम खण से गौर किया। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह किया। मुलाकात दौरान थियल अहम अखबराई मुस्तबिल में मुस्बत कदम ला रस्तो खोलींदे खिते में जटादार अमुन के क्याम लाए मददगार साबित थन्दी।
2: अमेरिका के गाल पांजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो धमकियुन ए दबाव सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसद पुज़ेशान चयो आहे त वाशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ाद ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुसबत घुबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।
1: अमेरिका ईरान खिलाफ नई मुआशी पाबंदियों का ऐलान कर छो। ईरान से माली राबता रखंदड़ मुल्क के भी निशानो बनाने की धमकी।
3: अक्सर मान जो सवाल हों अस सही पोलियो की वैक्सीन दह साल तो थी डी वे तो अस वे बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सी रेशो दह साल घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।

जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: छुरो तो आइए।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर जी इज़ाफ़ी ख़ुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: पीटीआई बानीअ जी इलाज बाबति तो हिन अदालत जी दरख़्वास्त ते एतिराज़ ख़तम थियण बाद सुप्रीम कोर्ट नंबर अलाट करे छॾियो। उज़्मा ख़ान पारां तो हिन अदालत वारी दरख़्वास्त जल्द ॿुधणीअ लाइ मुक़रर करण बाबति बि दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।
1: सुनिए

गद्दल सतार भयो चवे। शामराद मिदरी खास फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खास फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे। सुबह

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ॿुधायो। हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। जो हंधु हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नर्द अची मस्जिद दर्स रोड मोरो। राबते जे लाइ फोन करियो 0301346459। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी। दर्स शहर ऐं उन जे आसपास जे वालदेन जे लाइ ख़ुशख़बरी, पारस अनमोल पब्लिक स्कूल दर्स मोरो में नर्सरीअ खां 8 क्लास ताईं मुफ़्त दाख़िला जारी आहे। हिते तव्हां जे ॿारनि खे तजुर्बेकार उस्तादनि जे निगरानीअ में दीनी ऐं जदीद तालीम, साफ़ सुथरो ऐं महफ़ूज़ माहौल, कुशादा क्लास रूम, बिजलीअ सां गॾु सोलर सिस्टम ऐं थधो पीअण जो साफ़ पाणी फराहम कयो वञे थो। रोज़ानो शाम जो नर्सरीअ खां 8 क्लास ताईं ट्यूशन क्लासिस पिण मौजूदु आहिनि। देर न करियो, अॼु ई पंहिंजे ॿारनि जी मुफ़्त दाख़िला कराए संदन रोशन मुस्तक़बिल ॾांहुं पहिरियों कदम वधायो। डायरेक्टर अदील अहमद मला 0326-2854-931। वधीक राब्ते जे लाइ एडमिन महबूब अली मला 0321-72-970। प्रिंसिपल तंज़ील अहमद 0328-37-05-531। ऐं मुज़म्मिल अली बिहण 0306-2044-381। पारस अनमोल पब्लिक स्कूल दर्स मोरो, हर ॿार जे रोशन मुस्तक़बिल जी ज़मानत है।
1: महंगे इलाज और ऑपरेशन के बगैर शिफा चाहते हैं तो मिलिए इस्लामाबाद के मशहूर व मारूफ खानदानी होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर फराज कामरान, टीए चेयरमैन, एमडीएच, आरएचएमपी, 25 साल से ज्यादा तजुर्बेकार, हर किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन, माहिर अमराज, गुर्दे और मसाने की पथरी, खूनी बादी बवासीर, हर किस्म का बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार, दमा, मैदे के अमराज, अल्सर, बदहजमी और एच पाइलोरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अर्कुन निसा, जिस्मानी असाबी और दिमागी कमजोरी, मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस आलमानी मेडिकल सेंटर, दादू रोड, मोरो। मजीद मालूमात के लिए राबता नंबर 0318-404-217, 0318-40-40-217।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: गुलाब खान भेण कहड़ा दोस्तों ठीक है सही है उम्मीद तरफ करीम तभी मुझे भाई भेनर बिल्कुल खैर खैरियत कई होंगी छो असि दुआओं तथा हर वक्त हर हंध गड गड होंद हमेशा वागू दुआ होंगी है अल्लाह तला सुठी सेहत दिए अल्लाह तला तूली में बरकतू अदा फरमाए खुश आबाद रहो कदें भी दुखो नो तो प्रोग्राम से जीएमओ एफ एम एटीएट की लाइव स्टूडियो में ऑन एयर किया है पर अजो के ढीह असा जीए सकरंट नवाब शाह एफ एम भी जुड़ियल है सकरंट नवाब शाह एफ एम वा भी अज डॉक्टर फराज कामरान जो सेहत के मुतलिक बेहतर का बेहतर आगाही भर गाल बुधा खास तौर से सकरंट या मोर वा जो असा लिसनर्स असाज प्रोग्राम में शामिल थी सकन था शामिल थियण जो तरीकेकार सवलो है असान मोबाइल फोन पे तुम कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सको था नंबर है 0318 40 40 70 एक दफो भी असांखे नंबर बुधाया 0318 40 40 217 असो लाइव कॉल नंबर है हमेशा वागुर डॉक्टर फराज कामरान साहब असा स्टूडियो में मौजूद हैं जी मुख्तलिफ बीमारियों को इलाज कह पा इस्लामाबाद जहाँ मशहूर व मारूफ होम्योपैथिक जहाँ 26 साल का तजुर्बो रखंदड़ डॉक्टर हैं पा इन वक्त असाजे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साहब हलण का पैर तभी एक अहम अनाउंसमेंट कह हल्दे तो डॉक्टर साहब इन जुमे तीन मोरू वारी क्लिनिक मौजूद हूँ उन 8 दिन के लिए डॉक्टर साहब इस्लामाबाद विजिट ते वही रहा है अगर सकरण का या मोरो का को पेशेंट डॉक्टर साहब वट अचान चाहे तो वो इन जुमे ताई अची सके तो अची करे डॉक्टर साहब के पांजी तबियत दिखारे सके तो डॉक्टर साहब जुमे ताई पांजे क्लिनिक जी जेका टाइमिंग है जेका सुबह 9 का शाम जो 5 बजे ताई उन सेम टाइमिंग ते पांजी क्लिनिक ते मौजूद हुंदा अच्छा क्लिनिक जी एड्रेस ताके मैं बुधाइंदो हला स्पेशली जेके सकरण वाला दोस्त संगे इन वक्त बुधी रहा है त क्लिनिक आहे आलमाणी मेडिकल सेंटर आहे दादू रोड ते आहे बाईपास टाउन एकड़ी जबरदस्त टाउन ठहल है उन टाउन के बिल्कुल आमू सामू ही है आलमाणी मेडिकल सेंटर जिते डॉक्टर साहब सुबह जो 9 बजे का वी शाम जो 5 बजे ती वेहंदा मरीजन जो इलाज कंदा चेकअप वगैरह कंदा क्लिनिक नॉन स्टॉप खुलल होंगी है सुबह 9 का शाम 5 बजे ती उन अलावा ढो आसान तरीको है जो अस हर वक्त बुधाइंदा रहा हूँ हर प्रोग्राम में बुधाइंदा रहा हूँ अचान का पैर अगर तुम कॉल कर वा इन ही नंबर से जो नंबर तक अनाउंस एक दफो बी तुझा तो 0318 40 40 217 इन नंबर से कॉल कर डॉक्टर साहब का पुछी वा डॉक्टर साहब तुम्हें क्लिनिक में मौजूद आयो या ना आयो तो तवजो जो पंध है ना वो सजाओ थी वो तक पक थी वी डॉक्टर साहब क्लिनिक में मौजूद है डॉक्टर साहब जिनके भी इंतजार रहो तो एक पेशेंट के टाइम दिनों है वो पेशेंट इन टाइम तीन अची वो तो अड़े तरीके से तीन पा में कम्युनिकेशन थी वी मरीज डॉक्टर के विच में कम्युनिकेशन थी वन तमाम घनी आसानी पैदा थी सके थी तो डॉक्टर साहब मौजूद है असान स्टूडियो में सर अस्सलाम वालेकुम वेलकम भलीकार फखर रागला
1: जी वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह जनाब थैंक यू सो मच क्या हाल है आपके
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सुनाएं आप कैसे हैं तबीयत कैसी है आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और शुक्र अल्लाह का आपकी दुआएं हैं तमाम सुनने वाले सामीन की दुआएं हैं और उन मरीज़ों की जिनको अल्लाह ने शिफा दी है उनकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और तैयारी क्या है बस हमारा तो प्लानिंग होती है कि भाई इस तारीख को जाना है इस तारीख को वापस आना है वहाँ के जो काम है वो निपटाने हैं जो वहाँ पर क्लिनिक है उसको थोड़ा सा
0: वहाँ पर टाइम देना पड़ता है
1: बिल्कुल बिल्कुल तो उधर से फारिग होंगे बस फिर वापस आपके शहर में आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे और ये हमारी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी इंशाल्लाह ताला तमा खैरियत सा विंदा आई वरी खैरियत सा पांजे बचन खां थी करे वापस अची विंदा मोरोमी
1: इंशाल्लाह
0: मोरोमी तवांगी खबर आहे त काफी एड़ा मरीज आहिन जेके तवां जे अचण जो इंतजार कंदा अजा उन खां अलावा तांके बी मजे वाली गाल मा बुधायां डॉक्टर साहब
1: जी जी
0: एक त मरीज आहे जेको तां वटी इंदो आहे एज़ अ डॉक्टर तां उन जो इलाज कंदा आहियो पर कुछ जेके असां जा लिसनर आहिन उनन के तमाम घणो इंतजार हुंदो हो चंदा डॉक्टर साहब कॾहिं ईंदो
1: बिल्कुल
0: ऐं डॉक्टर साहिबु असांखे सिहत जे मुताबिक़ ॻाल्हियूं ॾसींदो आहे काफ़ी माण्हू इंतज़ारु कंदा आहिनि ऐं काफ़ी माण्हू जेके सिहतमंद माण्हू आहिनि ईअं न आहे त सिर्फ़ु असांखे मरीज़ ॿुधी रहिया आहिनि ईअं बि न आहे जेके सिहतमंद माण्हू आहिनि उहे बि असांखे रेगुलर ॿुधंदा आहिनि ऐं ॿुधी करे वरी जेके तव्हां स्पेशल टिप्स ॾसींदा आहियो उन्हनि टिप्स जे बारे में बि वरी उन्हनि ते बि हू कोशिशि कंदा आहिनि त असां पंहिंजे लाइ उहो टिप्स अप्लाई कयूं त जीअं असांजी सिहत अञा वधीक बहितर खां बहितर थी वञे।
1: बिल्कुलु, इहो त सिहत से मुतालिक प्रोग्राम है और इसमें मैं हमेशा ऐसी ही बातें बताता हूँ कि जो लोगों के काम आए और उनको बीमारियों से दूर रखे और उनको सेहतमंद रखे।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, कॉलर की तरफ हलंदा से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अदा साईं केर किथां खां ॻाल्हायो था?
2: रहमान अली मलकानी आप सब जो यहां पे ॻाल्हायो
0: जी। अदा रहमान, छा था पुछण चाहियो डॉक्टर साहब खां? ठीक आहे, 10 साल उमिरि आहे नंढड़े जी। ॿिन्ही पेरनि जे खुड़ियुनि में? ॿिन्ही में सूर थिए थो दादा?
2: जी जी, ॿिन्हिनि में।
0: ऐं केतिरे वक़्त खां वठी इहो सूर अथसि?
2: तकरीबन 15 ॾींहं।
0: अच्छा, 15 ॾींहं। धक वग़ैरह त न लॻो हुयो नंढड़े खे? अच्छा, इहो ॿुधाइजो त नंढो जेको ॿारु आहे 10 सालनि वारो, उहो घणो करे जुती इस्तेमालु कंदो आहे या पेर उघाड़ो करे हलंदो
2: आहे?
0: अच्छा, मतिलबु पेर उघाड़ो वधीक हूंदो आहे, जुती घटि पेरियल हूंदी आहे। जी हा, बिल्कुलु ईअं बि न आहे। बराड़ी जा काफ़ी ॿार अहिड़ा बि आहिनि जेके चपल इस्तेमालु कंदा आहिनि। ईअं न आहे त जेको बराड़ी जो माण्हू हुजे उहो चपल इस्तेमालु न कंदो हुजे। चङो, ठीकु आहे अदा रहमान। डॉक्टर साहिब खां पुछी था वठूं नंढड़े जी तकलीफ़ जे मुतालिक़। तव्हां पंहिंजो रेडियो सेट खे ऑन करे छॾियो, आवाज़ वधाए छॾियो। अच्छा डॉक्टर साहिब, 10 साल का बच्चा आहे और 15 दिन हुए उसे पेरू के एड़ियूं में, दोनों एड़ियूं में दर्द हो रहा है और मुसलसल दर्द चल रहा है। चोट भी नहीं लगी है और अमूमन वो जो है ना वो देहात के कामकाज में बिजी होता है।

0: मैं चेकअप मायने के बाद उसको मेडिसिन दूंगा और इंशाल्लाह ताला उसका जो ये दर्द है ये ठीक हो जाएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल अदा रहमान इन आए तवा वठी अचो नंढड़े के डॉक्टर साहब वट अक्सर करे इन दिठो वो आए तो जी कैल्शियम की खोट के करे पेरन के खुड़न में सूर पवंदो आए बाकी को जख्म वगैरह तहां नंढड़े के ना लगो नई को धक लगो आए नई वरी को अल्लाह पनाह में रखे को अड़ो इन्फेक्शन आए तो उन्हें मां मुराद यहाँ थी थे तो अच्छा नंढी उम्र जो है यूरिक एसिड जो भी डाउट नो कर सके तो इन यूरिक एसिड वी वो होने लाए डॉक्टर साहब जन चवन था अड़े किस्म जे नंढड़न बार में तकलीफ थी तो उन्हें जो अक्सर करे कैल्शियम से ताल्लुक होंद है कैल्शियम घट

0: थियण जे करे पेरनि जी तिरनि में या खुड़ियुनि में सूरु पवंदो आहे। हाणे इन कैल्शियम खे वधाइण जूं दवाऊं होम्योपैथिक में अॼु ज़बरदस्त मौजूदु आहिनि। उन जे लाइ तव्हां अचो डॉक्टर साहब सुबुह जो 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं बाईपास टाउन दादू रोड मोरो ते मौजूदु हूंदा। ऐं तव्हां नंढे खे वठी अचो, इलाजु हलंदो थोरो घणो टाइम न हलंदो, थोरो ई टाइम हिकु अधु कोर्स में हुनजी मुकमल जान छुटी वेंदी ऐं कैल्शियम हुनजो बहाल थी वेंदो जेको घटि आहे। छा था पुछण चाहियो डॉक्टर साहब खां? ठीकु आहे, मजदूरी कंदा आहियो? ख़तरनाक आहे। ठीकु आहे, हाणे जिस्म ते जेको आहे झीरे झीरे थी विया आहिनि
1: तमामु, जीअं आरायूं निकिरंदियूं आहिनि पर बाक़ाइदे तंगीअ सां थो खाना पर माना खाद नथी लहे।
0: अच्छा, अगरि जे सीमट जो कमु हफ़्तो खनि नथा कयो त पोइ उहा ख़ारिश ख़तम थी वञे?
1: घटि थिए थी पर लॻी पई
0: आहे। अच्छा, हाणे इन तकलीफ़ खे टाइम केतिरो थियो अथव? अच्छा, गर्मीअ में वधीक ज़ोर वठे थी तव्हांजी इहा तकलीफ़। अच्छा, भला हाणे इहो ॿुधायो त इलाज करायो अथव हिन जो कुझु? ठीकु आहे, अदा तव्हां नालो कंहिंजो बि न खणो, सिर्फ़ ॻाल्हि कयो।
1: हा, उन खां मां दवा वठी आयो माशाला।

0: फ़ाइदो पियो पर वरी आहे थोरो मज़दूर माण्हू पुॼी न सघियासीं।
1: ठीकु आहे,
0: इन जे करे न अची सघियासीं। बाक़ी इलाज तक़रीबन मां हैदराबाद ई बि वियोसि, पर माना फ़ाइदो मूंखे किथे बि न आहे। दातू में डॉक्टर आहिनि घणा, पर फ़ाइदो नथो पवे।
1: ठीकु आहे दादा, डॉक्टर फराज़ कामरान साहब खां पुछी था वठूं। वॾी महिरबानी मिठा तव्हांजी, तव्हां असांखे कॉल कई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भाई सीमेंट का काम करता है, मजदूरी वगैरह ये मिस्त्री जो होते हैं उनके साथ, तो उस वजह से 4 साल हो गए हैं इसे, ये तकलीफ हो गई कि जिस्म पे दाने दाने निकल आए, जैसे गर्मी दाने होते हैं ना, और इनमें इतनी ज्यादा खारिश होती है कि ये जो है ना खुजा खुजा के जो है थक चुका है। गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में कम,
2: सर्दियों में कम है।
1: हाँ, ये मसला है। होम्योपैथी की दवाई ली, उससे फायदा कुछ हुआ, मगर फिर इसने बंदे ने वो होम्योपैथी की दवाई छोड़ दी।
2: इलाज का सूरत हाल ऐसी होती है कि इलाज हमेशा इस तरीके से करना चाहिए कि आप उसको मुस्तकिल बुनियादों पर भरोसे के साथ और मुकम्मल शिफा मिलने तक आप इलाज को जारी रखें। अक्सर औकात क्या होता है कि मरीज थोड़ी सी दवाई लेता है और फिर उसके बाद उस दवाई का इस्तेमाल छोड़ देता है। दो सूरतों में, या तो ये होता है कि दवाई के इस्तेमाल से उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है कि भाई ये दवाई ने एग्रीवेशन कर दी है और ये हमें रिएक्शन कर रही है, ये तो फ़ायदे के लिए लेकर गए थे हम, लेकिन तकलीफ़ तो बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि वो इस बात को नहीं समझता कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो जब एक जब स्टार्ट लेती है तो उस वक्त उसका एक्शन ऐसा होता है कि मरीज़ को लगता है कि जैसे उसकी तकलीफ़ बढ़ गई है, लेकिन वो बढ़ना जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये एक प्राइमरी एक्शन होता है मेडिसिन का, होम्योपैथिक मेडिसिन का। फिर सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है कि वो बीमारी उस दवाई के कंट्रोल में आ जाती है। अंदर से, जिस्म के अंदर से जो गंद कचरा होता है, जो जहरीले मादे होते हैं या जरासीम वगैरह होते हैं, उनको जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अक्सर ख़ारिश के मामलों में और ये जिस्मानी जो जल्दी अवारिज होते हैं, जल्दी अमराज जो होते हैं, इसमें ये चीज़ ख़ास तौर पर देखी गई है कि जब हम मरीज़ को दवाई देते हैं तो उसकी तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है। मरीज़ ये समझता है कि उसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई है, लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के बाद वही दवाई उस मर्ज़ को काबू कर लेती है और जिस्म पे से वो तकलीफ़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर आप आधे में मर्ज़ को पहुंचा के और इलाज छोड़ दोगे तो बीमारी जो है वो दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाती है और फिर वो उस दवाई के कंट्रोल में भी नहीं आती। और इनके साथ जो मसला है, इनके साथ मसला ऐसा है कि कुछ तकलीफ़ इनकी ज़ाती है और कुछ तकलीफ़ जो है वो इनको सीमेंट दे रहा है। सीमेंट का इस्तेमाल जो है वो इनको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उसी जगह पर और भी बहुत सारे लोग उसी सीमेंट में काम कर रहे होंगे, लेकिन उन पर इतना मसला नहीं होगा। तो जो आदमी बीमार होता है उसके ऊपर ये केमिकल और उसके ऊपर ये जो बैरूनी जो असरात होते हैं, ये ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। इनसे मैं कहूँगा कि आप परेशान ना हों, आपका ये मसला ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ भरोसे से मुस्तकिल बुनियादों पर इलाज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा इलाज ले और फिर उसके बाद गायब हो जाए।
1: जी हाँ, बिल्कुल। अदा हाने इन्हीं है हरीबिश के, एक दफ़ो तुम दवा वठी वरी उनके छड़े था दियो, ऐं तव्हांखे इहा ख़बर पाए त तव्हांजो कमु अहिड़ो आहे, केमिकल वारो कमु आहे तव्हांजो, ऐं पोइ तव्हांजो अंदाज़ो लॻायो त तव्हां राति जो निंड कीअं कंदा हूंदा ऐं ॾींहं जो कमु कीअं करे सघंदा हूंदा। हाणे उहा तकलीफ़ कहिड़ी बि तकलीफ़ ई हूंदी आहे ऐं उहा इंतिहाई ख़तरनाक दर्जे ताईं हली वेंदी आहे। ख़ासि तौर ते चमड़ीअ जूं जेके बीमारियूं आहिनि, उन्हनि चमड़ीअ जी बीमारियुनि जी पाड़ एॾी त का जिस्म में मज़बूत आहे जो उन्हनि जो जल्दी इलाजु कराइजे त वधीक बहितर आहे। ऐं तव्हांखे त 4 साल थी चुका आहिनि, ऐं 4 सालनि खां मुसलसल तव्हां हिन तकलीफ़ में आहियो, इन जो मतिलबु त तव्हांजी बीमारी जी उमिरि बि 4 साल आहे। हाणे ज़ाहिरी आहे जेका 4 साल तव्हांजे जिस्म में घर ठाहियो वेठी आहे त उहा वञण में कुझु टाइम वठंदी। तव्हां अचो, डॉक्टर साहबु मौजूदु हूंदव हिन जुमे ताईं आलमाणी मीडिया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी उमेद रखो तव्हांजी इहा तकलीफ़ हिकु ॿिनि कोर्सनि में मुकमल तौर ते ख़तम थी वेंदी। अस्सलामु अलैकुम।
3: वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं बाबा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा एहसान अदा। केर किथां खां?
3: मैं हसन जेतर
1: बोलायां। जी अदा हसन, छा था पुछण चाहियो डॉक्टर साहब खां?
3: मैं
1: ठीक है दादा डॉक्टर साहब का पूछी था वठूं आई तवा बडी जी दवा है तो वरी डॉक्टर साहब जुमे का पो हल्या विंदव इस्लामाबाद 10 दिन जे लाए ने जे लाए बेहतर है तवा एक दफा वरी डॉक्टर साहब वट अची वणो पांजी या तबीयत भी दिखारियो अल्हम्दुलिल्लाह तवा अभी भी इलाज करायो हो अग्नि इलाज करायो हो तो ताके मुकम्मल फायदो पे जियो वरी ता बे एहतियाती कई हुई जे करे वरी ताके बीर हुआ तकलीफ थी वे भी हाने वरी करे इलाज करायो है तो वरी ताजी तकलीफ मुकम्मल खत्म थी चुकी है हाने या थोड़ी गडी खारिश आए तो या बिल्कुल यहा भी विधि हली डॉक्टर साहब का वधी का पूछी दा वडो बागे तवा जुमे का अग्नि अची सको सा डॉक्टर साहब पानी क्लिनिक ते मौजूद ना डॉक्टर साहब ये वो भाई है जिसको वो रतगड़ी वाला मामला था ना
2: जी
1: जिसे हम सिंधी में तो रतगड़ी कहते हैं और उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं
2: मुख्तलिफ नाम है आबला होता है छाला होता है
1: छाला।
2: और दाने होते हैं
1: दूसरी मरतबा दवाई ली दूसरी मरतबा भी दवाई ने परफेक्ट काम किया और वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है अब ना तो वहाँ से कोई ब्लडिंग हो रही है ना ही कोई दर्द हो रहा है बस वहाँ पे खारिश से हो रही है भाई को ना इससे थोड़ा परेशान है बाकी दवाई ने अपना काम किया
2: तो बस वही बात ना कि जब आपको पता चल रहा है कि एक दवाई आपको फायदा दे रही है तो उस और कुछ बीमारी का कुछ हिस्सा रह गया है यानी 80% 90% ठीक हो चुके 10-15% आपको अभी बीमारी बाकी है तो आप इलाज अगर जारी रखोगे तो आपका वो बाकी मसला भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा ये तो भरोसे की बात होती है इंसान जिस भरोसे से इलाज करवा रहा होता है उसी भरोसे से जो है ना अगर वो इलाज जारी रखेगा तो उसको फ़ायदा होगा ही होगा तो बस इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जुम्मे तक मौजूद हूँ मोरों में फिर मैं चला जाऊंगा तो फिर एक लंबा गैप आ जाएगा इसलिए कि उस गैप से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप जुम्मे से पहले पहले अपनी मेडिसिन का फॉलोअप के लिए आ जाए ताकि आपको मज़ीद मेडिसिन दी जा सके फिर जब वो इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से ये खारिश का मसला भी ठीक हो जाएगा
1: जी दादा बिल्कुल जी तो मैं तक पे भी दस तो जुम्मे थोड़ी डॉक्टर साहब मौजूद आज ना बटन दिन की दवा वही बची है तक अध में न छो इहा महिरबानी कजो इलाज मुकमल करायो तो जीअं तव्हांजी इहा तकलीफ़ हमेशह जे लाइ ख़तम थी वञे हाणे अगरि थोरो फ़र्क़ु पियो आहे ऐं वरी तव्हां चवंदो हाणे डॉक्टर साहिबु 10 ॾींहंनि खां पोइ मोटे 10 ॾींहं वॾो गेप आहे हिकिड़ी दवा जेका मुसलसल हली रही आहे उहा ख़तम थी वञे ऐं 10 ॾींहंनि जे विच ते गेप अची वञे त जेका गुज़िरियल तव्हां कोर्स वरितो हुयो उहो बि जहिड़ो क हलियो थो वञे ऐं उहो बि कम जो नथो रहे हुन जे लाइ बहितर इहो आहे त तव्हां हिकिड़ो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त तव्हां हीउ आख़िरी कोर्स वठंदा त ठीकु थी वेंदा ऐं इहा ख़ारिश वग़ैरह बि जेका आहे इहा तव्हांजी मुकमल तौर ते ख़तम थी वेंदी ऐं अचो डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूद हूंदा अस्सलाम वालेकुम
4: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम अदा साईं केर किथां का
4: सफीर दायरा कोटडाल हूं
1: जी अदा सफीर छा था पुछन चाहे डॉक्टर साहब का
4: अदा कोरोना था छडे
1: जी अदा
4: अद मथे में सूर पवे तो डाडो
1: कदे का वठी पए तो
4: इने के थी आन तकरीबन 2 साल कम
1: 2 साल थया इन अद मथे जो सूर थे तो अच्छा साजे पासे तो थे खाबे पासे तो थे
4: कदी खाबे पासे तो थे कदी साजे पासे
1: बिनी तरफन अच्छा टाइम केड़ो आए ने जो सुबह जो रात जो मंझन जो
4: मंझन जो पगर आके तो मगज के जाम उने जी वजह सा पो मन एकदम मथे में सूर पजी तो वने
1: मिसाल तौर ता के जिस्म ते अगर पगर अचे तो ता के एकदम मथे में सूर पजी तो वने
4: हां अद मथे में
1: सूर अच्छा इने दौरान ब्लड प्रेशर पने चेक करायो दवा हां
4: लोकल डॉक्टर ने चेक करायो
1: पो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ
4: ना कुछ थोरो मेरे नॉर्मल वधे तो जी जी
1: अच्छा उम्र केतरी आ तवा जी
4: मेरे आती है जी 23-24 साल
1: 24 साल तां जी उम्र है ठीक है दा डॉक्टर साहब का पूछी दा वटा अच्छा डॉक्टर साहब ये भाई है हमारा उसका ये कहना है कि 2 साल हो गए हैं और अधमथे का सूर
2: हां माइग्रेन
1: कभी कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड अमूमन ये तब होता है जब ये गर्मी में काम करता है या गर्मी इसको लगती है और पसीना इसके सर से निकलता है तो इसको एकदम से जो है ना दर्द हो जाता है
2: दर्द शक्की का
1: ब्लड प्रेशर उस वक्त इसने चेक करवाया है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ा हुआ होता है और इस तकलीफ को 2 साल हो 24 साल उम्र है भाई की
2: ये मर्ज है माइग्रेन या दर्द शकीका कहलाता है अमूमन ये मर्ज जो है ये होता है आँख की आँख से रिलेटेड खराबी में, हमारी आँख के ऊपर एक नस होती है जो यहाँ ऊपर से गुजरने के बाद हमारी गर्दन तक जा रही होती है, सर के ऊपर से गुजर के, अगर इसमें कोई ब्लॉकेज पैदा हो जाए तो उसकी वजह से हमारे आधे सर में दर्द होता है। अमूमन जो दर्द शकीका है वो इस वजह से होता है। इसके अलावा भी और कई वजूहात हो सकती हैं। जो कंडीशन ये बता रहे हैं उसमें तो मेरा गुमान है कि मुमकिन है कि ये गर्म होते होंगे और अचानक से या तो इनको ठंडी हवा लगती है और या ये ठंडा पानी पीते हैं। यानी अगर आपको पसीना आया हुआ हो और आप शदीद गर्म है आपका जिस्म और आप अचानक से ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हो, वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे इसी वजह से इनको ये दर्द हो रहा है, क्योंकि जब भी हम गरम गरम जिस्म पे या तो ठंडा पानी डालें या हम उस वक्त ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल है वो अचानक से जमना शुरू कर देता है, अचानक से।
1: ठीक है।
2: और वो गर्मी की सूरत हाल में, यानी जिस्म की गर्मी की सूरत हाल में पिघली हुई हालत में होता है। तो खुद सोचें कि अगर वो किसी ख़तरनाक जगह पर जम जाए और चिपक जाए तो वो कितना नुकसान देगा। तो जिस जगह पर एक दफ़ा ब्लॉकेज पैदा हो जाए उस जगह पे बार बार ब्लॉकेज का मसला होता है। तो इसी वजह से इनको ये 2 साल हो गए हैं और इनको जो है ये दर्द शकीका पीछा नहीं छोड़ रहा, कभी एक साइड पे और कभी दूसरी साइड पे। लेकिन परेशान ना हो, होम्योपैथी में दर्द शकीका माइग्रेन का बेहतरीन इलाज है। अगर किसी को राइट साइड का है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, अगर किसी को लेफ्ट साइड का है तो उसकी अलग मेडिसिन होती है, और अगर किसी को अल्टरनेट होता है तो उसकी अलग मेडिसिन है। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे इंशाल्लाह ताला इनका ये जो अधमत्थे का सूर है ये ठीक हो जाएगा।
1: जी अदा बिल्कुल डॉक्टर साहब तक बुधायो है ताई अंदेशो यो आहे त जे वक्त तहांके पघर निकरे तो उन वक्त या तो तुम थदे पानी जो इस्तेमाल कर पाया या तुझे जिसम के थदी हवा लगे थी तो एकदम तक मथे में सूर पैजी वे तो उनके लिए यो है तो इनको इलाज होम्योपैथिक दवा के वसीले है। तुम हलिया डॉक्टर साहब सुबह जो 9 वगे का वही शाम जो 5 वगे तई इन जुमे तीन डॉक्टर साहब पाँच क्लिनिक में मौजूद हूँ। उन डॉक्टर साहब हलिया वा इस्लामाबाद और 10 दिन का डॉक्टर साहब वापस इंदा उन अगमी अगर तुम इलाज कराने चाहो था तो हलिया अचो मोरो कॉलर की तरफ हल्दी। अस्सलाम वालेकुम।
5: وعلیکم السلام
1: جی ادا سائیں ریڈیو جو آواز گھٹ کجو
5: سیما غلام نبی پمبرو دو گلایا
1: جی ادا غلام نبی ریڈیو جو آواز گھٹ کیو
5: ہاری تے آواز گھٹا
1: جی ادا ہانی بدھایو چھا تھا پوچھن چاہو کتھا نہ گلایو دا
5: اے وہ تھالی بس بمبرے کا کرو دی کا
1: ٹھیک ادا چھا تھا پوچھن چاہو ڈاکٹر صاحب کا
5: لال مواری جو آئے سو متھے میں کرے ہن پاسے سور کرے ہن پاسے سور ائی دو خشکی اتھ داٹی
1: ठीक आ उने के भी अध मथे जो सूर तो थे
5: हाय ने जरा खुशकी भी दादी हो मथे के भी करे कने चक्कर
1: अगमी भी ता ने बारे में कॉल कई ना डॉक्टर साहब दे दा
5: हां वो छोकरो मुजो ना करो ने जे
1: उने जो इलाज करायो
5: हां उने जो करायो उने जो इनका से ढोकले में के ताज थे
1: ठीक आ मतलब उने जो भी इलाज ने करायो है अई ही ने के खुशकी भी आ है अई चक्कर भी अचन था जी अदा चक्कर भी अचन था भाई साहब चला गया
2: जी।
1: अच्छा मेरे ख्याल से इसकी जो वाइफ है उसे एक तो ये माइग्रेन है और खुश्की शायद जबान की खुश्की हो या बॉडी की हो कोई ऐसा मसला है और चक्कर भी आते हैं ना।
2: हाँ देखिए पेचीदा अमराज होते हैं बाज़ोकात, चक्कर जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आते हैं जिसमें लो बीपी की शिकायत की वजह से भी हो सकता है और अमूमन कान में ख़राबी की वजह से भी ये मसला होता है। कान की ख़राबी ऐसी नहीं होती कि वो वाज़े तौर पर बाहर से नज़र आए या कान में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, ये कान के अंदर जो हमारे बैलेंस को करने बैलेंस करने वाली जो एक डिवाइस लगी हुई है जो 3 हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर हाइपर सेंसिटिव की वजह से मरीज़ को चक्कर महसूस होते हैं। वो थोड़ा सा हरकत करता है और उसका ये पानी कुछ ज़्यादा हरकत करता है जिसकी वजह से मरीज़ को चक्कर की कैफियत महसूस होती है। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के चक्करों का इलाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है اور شکر الحمدللہ کہ ہومیوپیتھی میں اس چیز کا بہترین علاج موجود ہے, بہت سے لوگوں کو شفا ملی ہے. ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنے بیگم کو لے کر کلینک پہ تشریف لائیں, ان کے مکمل کیس ہسٹری لینے کے بعد ان کی تکلیف کے مطابق ان کو ایک نسخہ بنا کر دیا جائے گا, جس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی ان کی جو خشکی کا معاملہ ہے, جو ان کے چکر کا معاملہ ہے, اور ساتھ میں مائگرین وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سر میں درد بھی ہوتا ہے, آدھے سر کا درد, یہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا.
1: جی ادا بالکل تمام ننڑے کے بھی وٹھی اچو جن جی لاگمی کال کئی ہوئی ائیں پانی گھر واری کے بھی وٹھی اچو ائیں پنت پرے کونے کو ائیں علاج جے لائے تو مانو ملک کا باہر بھی ہلیا ویندا ہیں علاج اگر تکلیف آئے تو علاج کرائنو پندو. کالر طرف ہلندا سی
2: فون کرنے سے جو ہے نا
1: علاج نہیں ہوتا. السلام علیکم ادا. ادا جی ادا گلاب خان گلائے رہے ہیں بھا مجھا تمہاں کیر گلائے رہے ہیں
6: علی اکبر راج پر پچھا رہے
1: ہوں. جی ادا علی اکبر چھا تھا پچھن چاہے راک صاحب کا اچھا آنے راج پر صاحب پہ رہے ہیں پانچے ریڈیو جو آواز گھٹ کر
6: جی جی
1: بند تھیو ٹھیک ہے ہانے بدہ تکلیف کے ڈیا اچھا کلن میں سور آئے جوڑ چھا جا ٹنگن جا جوڑ آنگرن جا جوڑ ٹھونٹ وارا جوڑ
6: کلن وارا جوڑ
1: کلن وارن جوڑن میں سور آئے کیترے وقت کھا وٹھی آئے مہینو تھی جو آئے
6: جی جی
1: ٹھیک ہے دادا ڈاکٹر صاحب کم پچھی داٹھوں بڑی مہربانی بھا تماں سنگے کال کے ہانی ریڈیو ریڈیو جو آواز بھلے ودائے چھڑیو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ یہاں جو ہاں ان کے جوڑ جو ہے نا تقریباً اسے ایک مہینے سے یہاں پہ درد ہے بھائی کو نا اور تکلیف ہو رہی ہے.
2: دیکھیے مختلف قسم کے مسئلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں درد پیدا ہوتے ہیں. جوڑوں کا درد اگر محنت کرنے کے بعد زیادہ آپ نے کام کیا ہے اور آپ کا ویسے ایک حقیقت بات ہے کہ جو انسان زیادہ محنت کرتے ہیں ان کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتے, کیونکہ محنت کرنے سے ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے, ہمارے جسم کے تمام اعضاء تمام آرگنز جو ہیں وہ چونکہ ورکنگ میں آ جاتے ہیں, اور ورکنگ میں آنے کی وجہ سے یہ ایک خاصیت ہے ہمارے جسم کی کہ آپ جتنا زیادہ اپنے جسم کو استعمال کرو گے اتنا زیادہ وہ اچھا یہ استعمال سے مراد قدرتی استعمال ہے کہ جو ہم صحت مند ماحول میں جو اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے جسم کو فائدہ ہوتا ہے, اس کا صحت بحال ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی زیادہ چلا پھرا کرو, چلنے پھرنے سے ہمارے جسم میں بہت طاقت آتی ہے, ہمارے جسم کو فریش آکسیجن ملتی ہے, بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سے ٹاکسس کا خاتمہ ہوتا ہے, نکال ہوتا ہے. ہمارے جسم میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے جسم سے باہر نکلتے ہیں, وہ پسینے کے ذریعے بھی نکل سکتے ہیں اور وہ پیشاب کے ذریعے بھی نکل سکتے ہیں, اور ویسے بھی ہم محنت کرنے سے ہمارا جسم زیادہ صحت مند رہتا ہے, ایکٹیو رہتا ہے, صحت مند رہتا ہے. ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً کیا دیکھا گیا ہے کہ کسی گزری ہوئی بیماری کے برے اثرات کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ دردوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی بخار ہوا ہو اور بخار کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہوا ہو تو مریض کو جسم میں مختلف قسم کے درد کی شکایت کرتے ہوئے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے, جب بھی ہم مریض کو دوائی دیتے ہیں تو مریض کی جو کہ جسم میں جو دبی ہوئی بیماری ہے, جو دبا ہوا بخار ہے, وہ ایک دفعہ سامنے آتا ہے, پھر وہ ہماری دوائی سے ٹھیک ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے یہ تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو بھی مہینہ پہلے کوئی ایسا بخار آیا ہوگا جس میں ان کو سردی لگ رہی ہوگی, لیکن ٹیسٹ میں وہ ملیریا نہیں ہوگا, پر اس بخار کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو اس وقت دردوں کی شکایت ہو رہی ہے.
1: جی ہاں بالکل ادا, तव्हां अचो राग साहब वटि ऐं राग साहब जेका ॻाल्हि कनि पिया, थी सघे थो ईअं हुजे त तव्हांजी का दॿियल बीमारी हुजे जंहिं सबबु तव्हांखे इहो जोड़नि में सूरु थी रहियो आहे, कुल्हनि जे जोड़नि में तव्हांखे सूरु थी रहियो आहे। जॾहिं मरीज़ डॉक्टर जे आम्हूं साम्हूं हूंदो आहे त उहो अञा वधीक सवाल जवाब थींदा आहिनि, अञा वधीक डॉक्टर साहिबु उन्हनि खां ॻाल्हि ॿोल करे वठंदो आहे ऐं पोइ उन मुताबिक़ इलाजु कंदो आहे। डॉक्टर साहिबु जुमे ताईं मौजूदु आहिनि पंहिंजे क्लिनिक ते आलमाणी मेडिकल सेंटर साम्हूं बाईपास टाउन दादू रोड मोरो, तव्हां अचो डॉक्टर साहिबु हुते मौजूदु हूंदा। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबु, छा हाल आहे बाबा?
1: अलहमदुल्ला दा, डॉक्टर साहिबु चए पियो ठीकु आहे। जी ममन साले, छा था पुछनि चयो डॉक्टर साहिब खां? अच्छा, दिलि धक धक घणी थी करे, ॿियनि जी कोन कंदी
7: अच्छा,
1: इहो भला कंहिं दिलि वारे डॉक्टर खे ॾेखारियो अथई?
7: न बाबा, दिल वारो हिन जी तारीफ़ ॿुधो डॉक्टर साहिबु, हिन जे करे जेको आहे सो गुलाब प्यार साहिबु तॾहिं जेको आहे मुंहिंजो पहिरें सीनियर डॉक्टर आहे।
1: हा बिल्कुलु सही
7: आहे, हिन सां
1: ठीकु आहे दा, ठीकु आहे ठीकु आहे डॉक्टर साहिब खां पुछंदा। अच्छा डॉक्टर साहिब, इस भाई की दिल धक धक धक करती है
2: जी, असल में पता है क्या, ये क्या कहना चाह रहे थे,
1: इसकी हार्ट बीट ज्यादा है, असल कहने का मतलब ये है, और हार्ट बीट ज्यादा है,
2: जोर जोर से धड़क रहा है। हमारा दिल हर वक्त धड़क रहा होता है, आपको पता है, जब भी एक नई जिंदगी का आगाज होता है तो सबसे पहले दिल के खुलियात बनते हैं, और जब दिल के खुलियात बन रहे होते हैं, यानी अभी दिल बना नहीं होता, उस सूरत हाल में भी ये पल्पिटेशन में होते हैं, ये धड़क रहे होते हैं, ये एक हकीकत है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दिल अपनी जो है ना शक्ल मुकम्मल कर लेता है, दिल बन जाता है, और अपने ये हरकत इसकी जारी रहती है जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक एक जानदार जिंदा होता है। ये जो अंडे से जो बच्चा निकलता है, जब उसको गर्म किया जाता है, गर्म से मुराद ये कि अगर मुर्गी के अंडे की बात करूँ तो जब मुर्गी के नीचे रखा जाता है तो उसके जिस्म से जो उसको गर्माइश मिलती है, तो उसमें बच्चा बनने का जो अमल होता है उसमें भी सबसे पहले दिल ही बनता है, यानी दिल के खुलियात बनते हैं, और वो खुरियात जो है वो मुसलसल हरकत में होते हैं, यानी उसके पर धड़कन महसूस हो रही होती है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि आप के जिस्म में ये मुसलसल धड़क रहा होता है पर आपको महसूस नहीं हो रहा होता। अगर किसी ख़राबी की वजह से, अमूमन जिस्म खून में किसी ख़राबी की वजह से जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हो रही हो, तो उस सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए या किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके जिस्म में अगर कोई हार्मोनल चेंजेस आ जाती है, तो उस टाइम पर आपका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है कि वो आपको बाहर महसूस भी हो रहा होता है। अगर किसी इमोशन की वजह से ये मसला हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो वो वक्त ही होता है, और उसके टाइम पीरियड पूरे होने के बाद आपका वो दिल जो है वो नॉर्मल हालत पे आ जाएगा। लेकिन अगर बैठे बैठे आपके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आपको महसूस होती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये फिर दिल का आरज़ा कहलाता है, बीमारी कहलाती है, और इसका इलाज जल्दी करना चाहिए, क्योंकि दिल का मामला एक नाजुक मामला होता है, और दिल से मुतालिक होम्योपैथी में बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि होम्योपैथी एक स्लो असर करने वाला इलाज है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो पुरानी बीमारियां होती हैं उसमें होम्योपैथी वाकई उसका असर देर से महसूस होता है, लेकिन जब महसूस होता है तो बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं या जो इमरजेंसी की डिजीज़ होती हैं, जैसे दिल का मामला हो गया है, किसी को सांस नहीं आ रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, या किसी को कोई जहरीली चीज़ काट गई है और फौरी तौर पर आपने जो उस जहर है उसका एंटीडोट करना है, तो तो उस वक्त जो इमरजेंसी की मेडिसिन है वो बहुत परफेक्ट इतनी तेज़ी से काम करती है कि बाज़ औक़ात हमें हैरानगी होती है। हैरानगी क्या होती है, ये एक हकीकत बात है जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि अगर आपको दिल का आरज़ा है तो आपको जो मेडिसिन दी जाएगी उसका रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। इनसे भी मैं ये कहूँगा कि आपके दिल में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको चाहिए कि आप इसका इलाज प्रॉपर तरीके से और जल्दी करें।
1: जल्दी कराएं गुरुजी। अदा मामन साले इन्हें आए त तवां जेका तकलीफ़ ॾिसे रहिया आहियो या बिल्कुलु तकलीफ़ आहे ऐं इन्हे जो जेतिरो जल्दी तव्हां इलाजु कराईंदा ओतिरो वधीक बहितर आहे, उन जे लाइ तव्हां अचो। डॉक्टर साहिबु जुमे ताईं पंहिंजे क्लिनिक ते मौजूदु अथव। जुमे खां पोइ डॉक्टर साहिबु 10 ॾींहनि जे लाइ हलियो वेंदो इस्लामाबाद वारे जेका उते हुनजी क्लिनिक आहे ओॾां हलियो वेंदो ऐं पोइ वरी 10 ॾींहनि खां पोइ वापसि ईंदो मोरो। उन जे लाइ तव्हां सुभाणे ई अचो ऐं डॉक्टर साहिबु तव्हांजो मुआइनो कंदो, चेकअप कंदो। दिलि जे मुतालिक़ ॾाढियूं सुठियूं होम्योपैथिक दवाऊं मौजूदु आहिनि जेके तुर्त फ़ाइदो ॾींदियूं आहिनि ऐं उनजो देरि पा फ़ाइदो हूंदो आहे। कॉलर तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
8: जी
1: अदा
8: साईं, उहो डॉक्टर साहिबु चयो त दिलि जूं पटियूं आहे, दिलि जूं पटियूं मां कटायूं, दिलि जूं पटियूं मुंहिंजूं साफ़ आहे।
1: ठीकु आहे दा,
8: त पोइ छाजे करे मसालो थिए थो ऐं साह में थोरी तकलीफ़ थिए करे।

0: बूंदो पए करे करे काशे जे पंपिंग थे रिते मन दिल जो पटियो।
1: अच्छा ईसीजी कराई आए वो ठीक आए। हेलो अच्छा डॉक्टर साहब कल शायद इस बंदे ने कहा कि मैंने कॉल की थी मुझे तो मुझे भी कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि इसका ये कहना था कि मुझे चक्कर आते हैं ब्लड प्रेशर लो होता है और लेफ्ट साइड पे मुझे दर्द होता है तो शायद आपने इसे ये मशवरा दिया था कि ईसीजी वगैरह करवाएं तो आज इसका ये कहना है कि मैंने ईसीजी वगैरह करवाई है उसमें कुछ भी नहीं है उसमें मतलब कोई ऐसा जो है ना मसला नहीं है।
2: देखिए ईसीजी ईको या और कोई दिल का जो टेस्ट होता है ये हमेशा उस वक्त किया जाता है कि जिस वक्त आपको तकलीफ महसूस हो रही हो और उसके अलावा जो है ये अमूमन नॉर्मल ही आते हैं और हम नहीं कहते कि भाई आपको दिल का आर्जा हो। बहुत सारे मर्ज ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारा दिल मुतासर नज़र आ रहा होता है या फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जैसे दिल का मामला हो लेकिन मर्ज कुछ और होता है और वो किसी और जिस्म के किसी और हिस्से में होता है पर

0: करींदो पाण ॻाल्हायां त वधीक हुन खां पुछी वठूं हा त बाबा कहिड़े टाइम ते तोखे इहो पेर तुंहिंजा सड़ंदा, राति जो था सड़नि या ॾींहं जो था सड़नि? बहरहाल डॉक्टर साहिबु पाऊं जल रहे
1: जी जी,
0: इहे शिकायत शुगर वग़ैरह बि नही है और 40 साल उमर है भाई।
1: देखिए पहले भी मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पाँव की जलन आप शुगर की वजह से हो। एक ही अलामत मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ज़ाहिर हो रही होती है और इसी वजह से हर मरीज़ के लिए एक अलग इलाज तजवीज़ किया जाता है, उसकी उम्र, उसके बीमारी की उम्र, उसकी बीमारी की नौइयत और बीमारी की वजूहात के बिना पर। बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं जिनके पर मरीज़ का अपना फोकस नहीं होता, मरीज़ ख़ुद ये नहीं समझ रहा होता कि ये इस बीमारी की वजह से मसला हो रहा है। ये समझना जो है ये हम डॉक्टर हजरात का काम होता है और डॉक्टर का काम ही ये होता है कि वो जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँचोगे, बीमारी की वजूहात को नहीं समझोगे, तब तक हमारा जो इलाज है वो कामिल नहीं होता। और कामिल इलाज के लिए हम यही करते हैं कि पहली दफ़ा जब हमारे पास मरीज़ आता है तो उसकी बहुत डिटेल से हिस्ट्री ली जाती है ताकि उसके जिस्म में मौजूद बीमारी और बीमारी की वजूहात को मद्देनज़र रखा जाए और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस भाई से भी मैं यही कहूँगा कि आपको पाँव में जलन हो रही है, माना कि आपका शुगर लेवल ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शुगर की वजह से आपके पाँव जलते हो, और भी कई वजूहात होते हैं जिनकी वजह से जिस्म में बर्निंग फीलिंग जो है यानी जलन का एहसास हो रहा होता है। तो उन वजूहात की बिना पर जब आपका ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह ताला आपके ये पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी।
0: जी हाँ, अदा हमें इन्हीं आए तो जो जे हमराह के या तकलीफ़ आए ना उन्हें हमराह के तां वठी अचो मोरो में आलमाणी मेडिकल सेंटर ते। डॉक्टर साहब उन्हें के रूबरू चेक कंदा, चेक करण खां पोए उन्हें जो थोड़ो घणो इलाज थींदो ऐं उनजी या तकलीफ़ मुकमल तौर ते ख़त्म थी वेंदी, पोइ हू तव्हांखे शिकायत कॾहिं बि कोन कंदो त मुंहिंजा पेर सड़ंदा। कॉलर तरफ़ हलंदासीं, अस्सलाम वालेकुम। जी अदा गुलाम सर, छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहब खां?
2: घरवारी आहे उनखे मतिलबु चेल में ॾाढो सूरु आहे

0: डॉक्टर वठी आयो, डॉक्टर चाहे कुछ गुर्दन में पर इो टाइम तुम्हारे डॉक्टर आयो, डॉक्टर भी मशहूर आता बुधाई फोन में हो।
1: अच्छा, गुर्दन में किचरो आहे ऐं उन जे करे चेल में सूर पए थो। उमिरि केतिरी आहे तव्हांजे घर?
0: हा, 35 साल।
1: अच्छा, 35-36 साल उमिरि अथसि। उमेद वारी त न आहे? ठीकु आहे दा, ठीकु आहे। डॉक्टर साहिब खां पुछी था वठूं वरी
2: सीज़र त न।
1: अच्छा, इहो ॿुधाइजो अदा, इहो ॿुधाइजो त तव्हांजी घरवारी जेको ऑपरेशन वग़ैरह त न आहे थियल? ऑपरेशन भी ना आए थे, ठीक है दादा। हाँ डॉक्टर साहब, ये भाई है हमारा, उसके वाइफ के साथ मसला ये है कि उसके गुर्दों में कचरा है और उस वजह से या कोई और वजह होती है जिस वजह से इसे कमर में दर्द हो रहा है।
2: देखिए, ये जो चेल कहते हैं ना ये लोग, ये छोटी कमर को कहते हैं, यानी कमर का जो निचला हिस्सा होता है, और कमर के निचले हिस्से में जो दर्द हो रहा था ये इसका हमारे गुर्दों से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ख्वातीन में तो इसका ताल्लुक मुख्तलिफ जगहों पर हो जाता है। देखिए, एक मर्ज़ है बवासीर, पाइज़ का, पाइज़ वाले मरीज़ को भी बाज़ औक़ात कमर में दर्द महसूस होता है। जो ख्वातीन बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करने के बाद अगर यूट्रस में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी ख्वातीन को कमर दर्द होता है। ख्वातीन के और भी मुख्तलिफ़ अमराज हैं जिनके बुरे असरात ऐसे होते हैं कि मरीज़ा जो है वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी महसूस करती है, उसके पट्टे कमज़ोर होते हैं, उसकी काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है, और कमर के दर्द की वो अमूमन शिकायत करती है। इनसे मैं यही कहूँगा कि आप परेशान ना हो, अपनी वाइफ को लेकर क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएं, उनकी मुकम्मल केस हिस्ट्री ली जाएगी, उनकी तमाम बीमारियों से मुतालिक उनको बेहतरीन इलाज फराहम किया जाएगा, और अगर ये कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, अगर ये यूट्रस की ख़राबी की वजह से हो रहा है, या कमर में कोई फिज़िकली कोई नुक्स पैदा हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, हर सूरत में इस दर्द का इलाज मुमकिन है, और मुस्तकिल इलाज के ज़रिए इस दर्द से निजात भी मुमकिन है। होम्योपैथी तरीका इलाज की ये खासियत है कि जब इससे एक बीमारी का इलाज होता है तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, और फिर जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो फिर उसका इलाज भी बंद कर दिया जाता है।
1: जी अदा, इन आहे त चेल जो सूर तव्हांजी घरवारी खे गुर्दन में किचरे जे करे थींदो हुजे, ॿिया बि खोड़ सारा सबब थींदा आहिनि जंहिंजे करे चेल जो सूर थींदो आहे। उनजे लाइ तव्हां जुमे खां अॻु में डॉक्टर साहिब वटि वठी अचो पंहिंजी घरवारीअ खे, डॉक्टर साहिब हुनजो मुआइनो कंदो, चेकअप कंदो, इलाज कंदो, इनशा ताला उनजी इहा तकलीफ़ हमेशह जे लाइ ख़तम थी वेंदी। त प्रोग्राम से जी ॻाल्हि, डॉक्टर फराज़ कामरान सां गॾु जो वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते। वञण खां पहिरियां तव्हांखे सभिनी खे जेके लिसनर्स आहिनि या जेके डॉक्टर साहिब जा मरीज़ हिन वक़्तु ॿुधी रहिया आहिनि त उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलंदासीं त डॉक्टर साहिब हिन जुमे खां, जेको ईंदड़ जुमो आहे, इन जुमे खां वञी रहिया आहिनि इस्लामाबाद, पर जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक खुलियल रहंदी, छंछरु जे ॾींहं खां क्लिनिक बंदि रहंदी 8-10 ॾींहं। उन जे लाइ अगरि कहिड़ो मरीज़ फॉलोअप जे लाइ अचणु चाहे थो त उहो अची सघे थो, डॉक्टर साहिब पंहिंजे क्लिनिक ते जुमे ताईं मौजूदु हूंदा। इनशाला ताला हयाती रही त वरी साॻी टाइम ते सुभाणे तव्हां सां लाइव शो जे दौरान गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त, अलह वाही अलह निगहबान।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो ईरान के सियासी ए फौजी क़यादत से मुलाकातों अबन हुरमस खोलण ईरान अमेरिका तकरार के खात्मे ते गौर विचार घरू वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के ईरानी क़यादत से मुलाकात के नतीजो डींदड़ करार दई छो। समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में मोहसिन नकवी गालन जो महवर अमेरिका ईरान तकरार विच ओभर में जारी चिकताण के खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त नामे की मुकम्मल बहाली लाए घुर्बल कदम खड़ने ते गौर कयो वयो। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकिफ ए खदशन का आगाह कयो। मुलाकात दौरान थियल अहम अगभराई मुस्तकबिल में वधीक मुस्बत कदमन लाए रस्तो खोले दी ए खिते में जटादार अमन के क्याम लाए मददगार साबित थींदी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे दौरान अहम कामयाबियों हासिल थियं आहिन। ईरानी हुकूमत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के इंतहाई मुस्बत करार दई छो। ईरानी सदर मसूद पशिकियान के ऑफिस में जारी कल बयान में चो है फील्ड मार्शल के दौरे जा नतीजा जल्द सामू अचान शुरू थी वा। ईरानी सदर मसूद पशिकियान है अमेरिका के गाल की बहाली लाए पाँ रवियो तब्दील करो पव धमकिन ए दबाव से मसला हल थ बदर मुश्किल थी वा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारा आबनह हुरमज में बारूदी सुरंगू मुकम्मल तौर से हटाने की दावा। बारूदी सुरंगू विछाईंदड़ ईरानी बेड़न के निशानों बढ़ाने की भी धमकी दई छी। डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान जो मुआशी देवालो निकरी चुको है। ईरानी हुकूमत फौज के वे हिस्से के पघार दियण के भी काबिल ना रही।

0: अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जी तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैरक़ानूनी ऐं हिकु तरफ़नि पाबंदियुनि खे रदि करे थो। क़तर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिकु तरफ़ो क़रार ॾेई छॾियो। क़तरी परॾेही तर्जुमान चयो त क़तर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो।
1: लुकने हारे को वाइप कर देगा कौन?
2: ब्राइट।
0: अमेरिका पास्तारान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीकी जंग दौरान शहीद थियल सईद आगाचानी ऐं मजीद कादमी जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम। अमरीकी सफ़ीर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाकात, खिते जी मजमूई सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन सहकार खे बेहती ॾियण ते गौर कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल जी मिसबत किरदार जी वाखाण कई। धरती माउ आहे, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधीअ में लिखियलु जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीर सां गॾु शेयर कयो।

0: के खिलाफ भी कोई अदम-ए-एतमाद लाई जा सकती है अपोजिशन की तरफ से?
1: देखिए, ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम-ए-एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है। तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा, ये उनका हक है। तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे।
2: बेतमादी रिथ आणण अपोजिशन जो हक है, रोके नथो सघजे, वक्त अचण ते ॾिठो वेंदो। कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक चयो आहे त कानून साज़ी बाबत अपोजिशन जो इतिहाद थियण सुठी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं, हाणे अपोजिशन अॻिते वधंदी त असां वधंदासीं।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: तव्हां या तव्हां जा प्यारा हॾन ऐं जोड़न जी तकलीफ़ुनि में मुब्तला आहिनि, हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरो में हॾन जी बीमारियुनि जो माहिर ऐं कुदरती फिरियल पेरनि जे इलाज जो माहिर डॉक्टर नजीब रहमान कलहोड़ो, MBBS MS आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जंहिं वटि मौजूद आहिनि जदीद ऑपरेशन ऐं मौसर इलाज जूं सहूलियतूं। हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सायरा नादर, MBBS RMP DGO कॉलेजिस्ट, औरतुनि जे हर किस्म जी बीमारियुनि, चेकअप, सलाह मशवरे ऐं इलाज जूं बहितरीन सहूलियतूं हाणे अव्हां जे शहर में मौजूद आहिनि। रोज़ानो मंझंद 1 वॻे खां शाम 7 वॻे ताईं। एड्रेस: दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स, बांधी रोड, मोरो। हाणे राब्तो करियो। राब्ते जे लाइ सैद गुलाम मुर्तज़ा शाह एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्टेक्ट नंबर 0321-8284-594 ऐं
6: नवां जतोई ऐं भर पासे जे अवाम जे लाइ खु़शख़बरी। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह ऐं सेवण NICVD जो तरबियत याफ़्ता माहिर अमराज, दिलि, ब्लड प्रेशर, शुगर, दम, सहको ऐं मैदे जे बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर कासिम KM भट्टी, MBBS, डिपकॉड, MCPS, फैमिली मेडिसन, MD कार्डियोलॉजी। हर जुमे ते मंझंदि जो 3 खां 7 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: नवां जतोई नज़्द मुइन मेडिकल स्टोर। नंबर लिखाइण जे लाइ 0315-7322-203
7: खुशखबरी। मोरो में डंदन जो सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर अब्दुल हलीम जतियाल पंहिंजे कमाल महारत ऐं तजुर्बे सां गारंटी वारा डंद ऐं डंदन जा क्राउन लॻाए थो। डंदन जी माकोड़ी, कैरीज जो इलाज रूट कैनाल पिण जदीद ऐं बेहतरीन नमूने सां करे थो। डंदन जी भराई रेज़र मशीन ज़रिए कई वञे थी। डंदन जी स्केलिंग ऐं पॉलिश करे चमकाया वञनि था। डॉक्टर साहब अंगारो, अरबा ऐं खमीस, टाइम सुबुह जो 11 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। अलमुराद मेडिकल सेंटर, न्यू मालपीड़ी मेन रोड, मोरू में मरीजन जो चेकअप कंदा आहिन। राब्ते लाए 0301-3299-793।
6: खुशखबरी, खुशखबरी। हाणे अव्हां खे हैदराबाद, नवाबशाह या कराची वञण जी का बि ज़रूरत न आहे। दिलि जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर जावेद हुसैन डाहिरी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।